पता है, रियलाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, और ये मुझे बहुत साल लगे टू फिगर आउट कि जब आपको मोहब्बत हो जाती है ना, तो आपको सब कुछ आउटसोर्स करना पड़ता है. खाना आपसे बनता नहीं, काम आपसे होता नहीं, दिमाग आपका चलता नहीं है, तो आपको मम्मी को कहना पड़ता है कि भाई कॉफ़ी बना के रख देना, क्योंकि कॉफ़ी बनाने का भी दिमाग नहीं चल रहा है. आपको ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन अपने दोस्तों से पूछने पड़ते हैं कि यार ये जो बंदा है, ही इज़ टेलिंग मी दैट हमें एक वेकेशन कर लेनी चाहिए, इज़ इट टू सून टू गो आउट ऑन अ वेकेशन. आपका दिमाग नहीं चल रहा क्योंकि यू आर इन लव, और जब आप प्यार में हो तो आपके बाकी दोस्तों को आपके लिए दिल का, दिमाग का, पेट का काम करना पड़ता है. बेसिकली आई हैव रियलाइज कि जब मिर्जा गालिब ने कहा था, आई थिंक कि इश्क ने गालिब निकम, हाँ ऑब्वियसली मिर्जा गालिब नहीं कहा था, कि इश्क ने गालिब निकम्मा बना दिया, नहीं तो आदमी तो हम भी थे काम के. और मैं जिंदगी में इतनी बार निकम्मी बनी हूं कि ये मेरा प्रोफेशन बन गया है. अब मैं एक निकम्मी आशिक / आरजे हु गिव्स एडवाइस अबाउट लव हूँ. बट दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज कि आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपको प्यार हो गया है और अब आप किसी लायक रहे ही नहीं हो. कहाँ आप घर के चश्मों चिराग सबसे लायक इंसान थे, और अब कहाँ जमीन पे पड़े नालायक आशिक हो. अगर है ऐसी बात, वाई डोंट यू हिट मी अप, वी विल कंपेयर नोट्स. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE. सो नाउ गो अहेड, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, कर लो आशिकी फुल ऑन, बट कहीं मत जाना, जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

Mirchi. It's hot.

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आज मेरे साथ ऑन द मिर्ची हॉटलाइन इज समवन सो टेरिफिक आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू, बिकॉज जो मेरे साथ आज इस हॉटलाइन पर हैं उनका नाम है रूथ डिसूजा प्रभु, हु इज़ एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एंड फूड राइटर बेस्ड इन बैंगलोर। बट वो सब छोड़ो, उनके जितने भी ऐसे फूड क्रिटिक वाले काम हैं, दे हैव अपीयर्ड इन द न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा, मतलब इतने सारे पब्लिकेशंस दैट आई एम लाइक जस्ट फैन गर्लिंग ऑन हर राइट नाउ। हेलो, वेलकम टू द शो रूथ। क्योंकि हम जब भी खाने की बात करते हैं या प्यार की बात करते हैं या दिल टूटने की बात करते हैं, मुझे बड़े मजे आते हैं। और वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हार्ट ब्रेक राइट नाउ। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने जो इतनी इनक्रेडिबल किताब लिखी है अबाउट द बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन इंडिया, इट्स ओनली बट नेचुरल कि मैं आपसे ये सवाल पूछूँ कि वो एक कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट है इंडिया में जो हर फूडी कपल को एक बार तो जाकर चेकआउट करना चाहिए फॉर द फूड या द एम्बियंस या ऐसा कुछ भी।
2: आई विश आई कुड टेल यू देयर वाज ओनली वन रेस्टोरेंट। क्या मैं एक से ज्यादा बोल सकती हूँ?
1: अच्छा, आप जो एक से ज्यादा तो बोल सकते हो, बट आप जो एक बोलोगे मैं उसे नंबर वन पे काउंट करूंगी। ठीक है,
2: ठीक है। आई वुड से दैट द वन रेस्टोरेंट दैट कपल शुड डेफिनेटली ट्राई इज अ प्लेस इन बैंगलोर कॉल्ड द फार्म लो, स्पेशली बिकॉज इट बेस्ड इन द मिडल ऑफ अ फार्म, इट्स सराउंडेड बाय ग्लास, ऑल ऑफ द प्रोड्यूस कम्स फ्रॉम द फार्म right next to you, like 6 feet away, and into the kitchen and cooked for you on an open wood fire. And the menu changes every month, so I don't think it can get better than that. Wow. It's a beautiful, romantic place to be. So that would be my top pick.
1: That sounds delightful. मतलब imagine कि आपके आस-पास खाना ही खाना उग रहा है, आप और आपका partner बीच में बैठ के ऐसे खाना खा रहे हो, freshly picked from the farm in front of you. You're right. इससे ज़्यादा romantic क्या है? इससे ज़्यादा romantic?
2: हाँ,
1: यू आर गोइंग टू गो इन टू नंबर टू है ना, बिकॉज मैंने आपसे एक पूछा था बट आप बोल रहे थे कि नहीं, मैं तो दो तीन बताऊंगी।
2: डेफिनेटली मैं दो तीन भी बता सकती हूँ। द थिंग इज आई बिलीव दैट बिकॉज यू आर इन अ रिलेशनशिप, थोड़ा एफर्ट तो बनता है।
1: करेक्ट।
2: सो आई वुड से ट्राइंग टू स्कोर रिजर्वेशन एट से समथिंग लाइक प्रतीक साधु's नार इन कसौली। It's such a romantic place, and again you have Pratik Sadhu and his restaurant,
1: right,
2: and all the foraging that happens with it.
1: Right.
2: So that would be another place.
1: I want to tell people कि ये जो रेस्टोरेंट का नाम अभी आपको बताया है रूथ ने, वो काफ़ी रूथलेसली आपके वॉलेट से आपको जुदा कर देगा। तो अगर आपने अपने मम्मी पापा की किडनी विडनी सब बेच दी है, तभी सोचना कि आप अपने पार्टनर को कसौली के इस रेस्टोरेंट ले जा सकते हो। आई जस्ट हैड टू ऐड दैट, सॉरी, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट।
2: आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ऑल गुड थिंग्स कम एट अ प्राइस, सो yes.
1: हाँ, पापा की किडनी बेच दो, इट्स ओके, ही विल ग्रो अनदर वन, बट आपकी गर्लफ्रेंड को एक ही बार इम्प्रेस होगी। करेक्ट,
2: यस। एंड द थर्ड प्लेस आईड लाइक टू रेकमेंड इज दिस प्लेस कॉल्ड द नारू मूवी बार, व्हिच हैज ओनली 20 सीट्स एंड इट्स इन बैंगलोर, एंड राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन इट्स ऑलवेज बीन अबाउट द फास्टेस्ट थिंग ऑफ अस टू बी एबल टू स्कोर अ सीट। सो इफ यू कैन गेट दैट फॉर योर पार्टनर, आई थिंक यू हैव हाफ द बैटल वन देयर इटसेल्फ। इट्स अ रामेन बार पार एक्चुअली।
1: So, एक रामन बार है बैंगलोर में है, 20 सीट्स हैं। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो उन 20 सीट्स में से एक सीट पर आपकी गर्लफ्रेंड, एक सीट पर आप। आई लाइक हाउ यू थिंक, इट्स एक्चुअली प्रीटी फैसिनेटिंग रूथ। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अस अबाउट दिस प्रोफाइल ऑफ दीज थ्री रेस्टोरेंट्स, एंड ऑल दोज पीपल हु आर लिसनिंग टू अस राइट नाउ, प्लीज बी रेडी टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम ऑन दिस एफर्ट। एंड ऑन दैट नोट, अगर आप चाहते हो कि रूथ से अपने ही कोई सवाल पूछो अबाउट फूड एंड रेस्टोरेंट्स इन इंडिया, फील फ्री टू हिट अस अप। यू कैन फाइंड हर एंड मी ऑन इंस्टा या FB। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RoCHIE। सो गो अहेड एंड डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Radio Mirchi.
1: Radio Mirchi, it's hot.
2: Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: तारीखें भूल जाती हैं, नाम भूल जाते हैं, पर कुछ गाने हमें एक पूरा जमाना याद दिला देते हैं। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। ये वो शो है जहां हफ्ते के हॉटेस्ट टॉप 10 इंडिपेंडेंट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है, सम स्पेशल शाउट आउट्स, ऑल दैट एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10, जसलीन रॉयल बादशाह का गाना इनाम। पिछले हफ्ते से दो पोजिशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक और नंबर 10। उसके बाद नई नवेली एंट्री, ज़ारा खान स्केल्स का गाना, गाने का नाम है मूव बॉडी। इस गाने ने डेब्यू किया है ऑन गाना नंबर 9 एंड इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 9।

0: ज़ारा खान स्केल्स का गाना, गाने का नाम है मूव बॉडी, और नई नवेली एंट्री डेब्यू किया है सीधा ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। गाने आर्ट एक तरह से एक टिकट होते हैं टू अ मेमोरी, एंड सम ऑफ द बेस्ट मेमोरीज ऑफ माय लाइफ आर ऑफ दोस कॉलेज डेज। ये बात कभी सोची है कि जब हम उस उम्र में थे जब कुछ ज्यादा पता नहीं था तो हम सबसे बहादुर थे। उस उम्र में जो भी बनाया, जो भी सपने देखे, जो भी लिखा, आधा अधूरा या पूरा, उसमें एक चीज थी जो अब बाद में हम कहीं खो देते हैं, एंड दैट इज होप। वो हमारी जिंदगी का सबसे रॉ फेज होता है, जब हम ओवर कैलकुलेटिव नहीं होते कि इससे क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, करियर बनेगा या नहीं, बस दिल में कुछ था और लिख दिया। एंड दैट्स व्हाई इन द म्यूजिक स्पेस एज वेल, अगर आप देखेंगे सम ऑफ द बिगेस्ट पॉप स्टार्स जो हमने देखे हैं इन द लास्ट 4-5 इयर्स हैव बीन दीज यंग गन्स। बिली आइलिश द ग्लोबल आइकॉन का एग्जाम्पल ले लो, उनका गाना ओशन आइस तब फटा जब वो सिर्फ 18 साल की थी। हमारी अपनी जीनी जो देहरादून से है अब मुंबई में गाने बनाती है, उनके गाने लाइक सुकून, आशियाना, वो जनता के साथ कनेक्ट इसलिए ज्यादा करे बिकॉज उसकी राइटिंग बहुत ऑनेस्ट थी। तो ये ऑनेस्टी और ये रॉनेस कोई टेक्निक नहीं है या कोई हिम्मत नहीं है, या आई थिंक सोचने की हिम्मत है जो कहीं ना कहीं आई रियली फील वो उम्र अलाउ करती है। पर असली सवाल तो ये है कि जब हम कभी ये हिम्मत खो देते हैं तो क्या वो वापस मिल सकती है, क्या हम जीरो पे आके वापस शुरू कर सकते हैं। एक आर्टिस्ट है लखनऊ से जिनका एक गाना बहुत पॉपुलर हो रहा है, गाने का नाम है तारे, आर्टिस्ट का नाम है फरक, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट सॉन्ग्स जो जनता के दिल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें एक लाइन है जो आपको रोक देगी, वो कहता है परिंदा पिंजरे में इतने दिन रहा कि अब आसमान से ही डर लगता है। देयर सो मच टू टॉक अबाउट दिस सॉन्ग बट आई विल लेट यू सिट विद इट। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। आर्टिस्ट का नाम है फरक, गाने का नाम है तारे। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10 एज आवर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट ऑफ द वीक। एंजॉय।

लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: There's something so honest, so soothing about this song. गाने का नाम है तारे, आर्टिस्ट का नाम है फरक. नाम याद रख लीजिए, क्योंकि गाना तो डेफिनेटली याद हो गया आपको. बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की तरफ बढ़ते हैं. संजू राठौर की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज. गाने का नाम है बैंगल्स. पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जम करके बैंगल्स इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिस्टिंग टू गाना इन द टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 8.

0: रोजाना हिंदी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
2: नंबर 7 हो

0: किंग की आवाज में एक गाने का नाम है किनिया सोनी, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने हर्ष नुसी की आवाज में उन्हीं की लिरिक्स सुनी की कॉम्पोजिशन वाला गाना सुना, गाने का नाम साडी सुन ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। म्यूजिक आर्ट है, आर्ट इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, एंड एक म्यूजिक का फॉर्म जो सबसे ट्रू है इन द वे इट एक्सप्रेसेस इज हिप हॉप। ये जॉनरा ना किसी स्टूडियो में पैदा नहीं हुआ था, ये वहां से आया है जहां लोगों को माइक नहीं दिया जाता था लेकिन दिल में कहानियां बहुत हैं। जहां तकलीफ कोई सुन नहीं रहा है तो एक्सप्रेशन म्यूजिक बन गया। हर कंट्री का, सिटी का, एरिया का रैप का फॉर्म अलग होता है, कॉज वहां से जुड़ी कहानियां अलग होती है। दिल्ली हिप हॉप अलग है, मुंबई हिप हॉप अलग है, केरला का हिप हॉप बहुत अलग है, पर व्हाट्स कॉमन अमंगस्ट ऑल दीज फॉर्म्स इज द रियलिटी एंड एक्सप्रेशन ऑफ द आर्टिस्ट। पर कहीं ना कहीं इस पूरे मूवमेंट के पोस्टर बॉय रहे हैं डिवाइन, जिनका असली नाम विवियन फर्नांडिस है। बहुत सारे लोगों को लगता है दैट गली बॉय जो मूवी बनी थी वो उनकी लाइफ पे बेस्ड थी। दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। उन्होंने उस मूवी में कंसल्ट किया था, बहुत हेल्प करी थी, उनका म्यूजिक है बट वो उनके बारे में नहीं है। बट देयर आर सॉन्ग्स लाइक मेरी गली में जो पूरे देश ने पहली बार सुना ऑन अ बिगर लेवल, कॉज वो गली बॉय जैसी मूवी में आया। पर उसी साउंड ट्रैक में एक गाना था कॉल्ड आजादी। इस गाने के प्रोड्यूसर है डब शर्मा, जो चंडीगढ़ का एक लड़का है जिन्होंने अपने कमरे में बैठकर ये कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, किसी फिल्म के लिए नहीं, किसी ऑडियंस के लिए नहीं, बस अपने लिए। एंड द सॉन्ग समहाउ मेड इट टू अंकुर तिवारी, जो उस वक्त गली बॉय के म्यूजिक को सुपरवाइज कर रहे थे। एक मेल गया, एक मीटिंग हुई, एंड दैट सॉन्ग मेड इट टू द बिगेस्ट मूवी अबाउट एक्चुअल हिप हॉप। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज हैज कम आउट ऑफ द कल्चर। डब शर्मा डिवाइन का गाना, गाने का नाम है आजादी। हर बार सुन के गूज़बम्स आ जाते हैं। गाना इंडी टॉप 10 पर, बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: क्यों? एक तरफा तराजू, तेरी हंसी मेरे आंसू, घुट घुट की क्यों सांस लूं? उसे देगा क्या हिसाब?
1: तेरा पिंजरा मजाल ने खाना, परिंदे आने उड़ जाना, तेरा पिंजरा तेरा मुक जाना, सारा लाना बाना, परिंदे आने उड़ जाना, तेरा

0: ये गाना सुनने के बाद हाथ अपने आप सर पे चला जाता है. मैड रिस्पेक्ट टू डिवाइन फॉर दिस सॉन्ग, वन ऑफ द टॉप 5 सॉन्ग्स इन देसी हिप हॉप. एट आरजे कनक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड क्विकली इस इंडी पॉप क्विज का आंसर करो. डिवाइन एंड करण औजला ने एक कोलैब करके एक एल्बम रिलीज करी थी आज से 2 साल पहले. जल्दी बताओ उस एल्बम का नाम क्या है. काउंटडाउन का अगले वाला गाना अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी. 7 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. उड़ी उड़ी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: गाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
0: इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
2: नंबर 4

0: आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां की आवाज में एक गाने का नाम है ए अजनबी, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, इस हफ्ते भी 2 पोजीशन ऊपर जम करके ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। कुछ गाने इस हफ्ते हॉट होते हैं, अगले हफ्ते नहीं, बट कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं एक एड्रेस बन जाते हैं हमारे लिए, एड्रेस टू अ मेमोरी, अ ट्रिप टू नॉस्टैल्जिया। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। द सॉन्ग फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती है दीवाना।
0: एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज
3: बाय

गाने का नाम है मायरी, साल 2000, एल्बम फिर धूम पलाश था इनकी आवाज में। जरा याद कीजिए यार वो जमाना, कैसेट की रील पेंसिल से घुमाना, इंतजार करते रहना कि मेरे वाला गाना आएगा। आई रिमेम्बर आई वॉज ऑब्वियसली इन स्कूल जब मैंने गाना सुनना शुरू किया था, बहुत अच्छी धुन लगती थी। एंड दैट लाइन, दैट बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलके मायरी, शायद मैं इतनी छोटी थी दैट मैंने उसका मतलब ही नहीं समझा, एंड मैं बस बहुत इतराती थी ये गाना सुन के, सजती थी सवरती थी। एंड एज वी कीप ग्रोइंग अप, वो गाने समझ में आने लगते हैं, उनके पीछे के मतलब बदलते जाते हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे मायरी में वो अपनी माँ से ये कहानी बता रहे हैं ये भी नहीं समझ में आया था, लेकिन नाउ इट ऑल साउंड सो ब्यूटिफुल दैट वो जिस लड़की की तारीफें कर रहे हैं, जिस लड़की के बारे में बता रहे हैं, जिसकी याद उन्हें आ रही है, वो अपनी माँ को बता रहे हैं। पर यही तो बात है, गाना नहीं बदला यार, हम बदल गए। गाना 1998 में बना था, फ्रंट मैन पलाश सेन की आवाज, यूफोरिया द बैंड, जिसने आज भी ऑलमोस्ट आफ्टर 45 इयर्स ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कभी कोई फिल्म का गाना नहीं किया। द रियल ओजी पोस्टर बॉयज ऑफ पॉप म्यूजिक, अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, यूफोरिया द बैंड का गाना। गाने का नाम है मायरी, इज योर टिकट टू नॉस्टैल्जिया टुडे ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

आई स्वेर गाने आर लाइक मेमोरीज जो हमें ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. आई वॉज टेकन बैक टू माई चाइल्ड हुड होम बाई लिसनिंग टू दिस सॉन्ग. पलाश सेन की आवाज में यूफोरिया द बैंड का गाना माइरी स्टिल हिट्स होम एग्जैक्टली हाउ इट यूज टू 10 years बैक और 20 years बैक. And that's why it's a classic. At RJ Kanega on Instagram पर आओ. कोई भी गाना from the 90s, 2000s जो आज भी आपको लगता है it hits home buddy, मुझसे आगे शेयर करो. मैं और अश्का है, my sound producer, हम आपके recommendations को बहुत seriously लेते हैं. We might feature your song next week. Now back to the countdown. अगले वाले गाने की बारी. गाने का नाम है Dealer. दिलजीत दोसांझ की आवाज, उन्हीं की composition. 18 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार. Dealer is playing right next for you on Gaana number 3. You are listening to Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है कनिका. Enjoy. Number 3.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका, शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, ओनली शो ऑन मिर्ची जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री थी, हमारा 90s-2000s का इंडी पॉप क्लासिक था। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, लेकिन एक क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप। जसलीन रॉयल बादशाह का गाना इनाम वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। फिर एक नई नवेली एंट्री, ज़ारा खान स्केल्स का गाना मूव बॉडी ऑन गाना नंबर 9। संजू राठौर का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 8। हर्ष नुसी का साड़ी सुन पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके इस हफ्ते था ऑन गाना नंबर 7। ऐश किंग का किनिया सोनी गोइंग स्ट्रॉन्ग ऑन गाना नंबर 6। इन ऑल ऑनेस्टी ये गाना इस काउंटडाउन का मेरा फेवरेट गाना है, अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 5। आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खा का ए अजनबी अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग ऑन गाना नंबर 4। दिलजीत दोसांझ का डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। The top 2 songs of the week yet again, वही शफल हो रहा है ऊपर नीचे 17 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन, दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। एंड द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, मिट्टा रॉर का गाना, मिट्टा रॉर स्वरा वर्मा की आवाज में, मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते नंबर 2 पर था, 1 पोजीशन ऊपर जम करके इस हफ्ते शीशा इज ऑन गाना नंबर 1। ये दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 2।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई बजा।

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: ज्यादातर फिल्में फ्राइडे को फेल नहीं होती, मंडे को होती हैं। फ्राइडे तो मार्केटिंग का दिन होता है, देन कम सैटरडे जो होता है क्यूरियोसिटी का दिन, लेकिन मंडे सच बोलता है। तब पता चलता है ऑडियंस से टिकट्स खरीदने आई थी या दिल देकर गई थी। पर आज के जमाने में जहाँ हर फ्राइडे कोई ना कोई फिल्म, कोई ना कोई गाना और कोई ना कोई नेक्स्ट बिग थिंग लॉन्च होता है, वहाँ मंडे से बड़ा क्रिटिक कोई नहीं होता। इसलिए अब सिर्फ ओपनिंग कलेक्शन से कहानियां नहीं लिखी जाती, वर्ड ऑफ माउथ लिखता है, रिपीट ऑडियंस लिखती है, और कभी कभी एक गाना या एक फिल्म अपनी असली जानी शुरू ही तब करती है जब उसका प्रमोशन खत्म हो जाता है। इस हफ्ते का मिर्ची टॉप 20 भी ऐसी ही कुछ कहानियों से भरा हुआ है। हाय, माय नेम इज सुरेन सुंदरम एंड लेट्स गेट दिस शो ऑन द रोड। और नंबर 20 इस हफ्ते भूत बंगला का ये गाना तू ही दिसता।
0: नंबर 20।

ओ बाय द वे, अरिजीत सिंह का एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन अभी एक ऐसा गाना जिसकी कहानी ने साबित किया कि जब ऑडियंस किसी फिल्म को अपना लेती है ना, तो उसे कोई मार्केटिंग कैंपेन हरा नहीं सकता। नंबर 19 पर दिस इज मस्कारा बाय AR रहमान एंड इशाक कामिल। फिल्म का नाम तो आप जानते हैं, मैं वापस आऊंगा। नंबर 19।

वैसे धुरंधर अगले साल नेशनल अवार्ड्स में कितनी बड़ी प्रेजेंस होने वाली है उसका अंदाजा अभी से लगाया जा सकता है। लेकिन इस हफ्ते नेशनल अवार्ड्स ने एक और फिल्म को गले लगा लिया, आर्टिकल 370, बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस, यामी गौतम। और पता है मुझे इस जीत में सबसे खूबसूरत बात क्या लगी? बॉलीवुड यामी गौतम को हीरोइन बनाना चाहता था, यामी गौतम ने एक्टर बनना पसंद किया। जब सब ग्लैमरस फिल्म्स के पीछे भाग रहे थे, यामी ने कहानियां चुनी। अ थर्सडे, लॉस्ट, चोर निकल के भागा, द ब्रिलियंट हक एंड आर्टिकल 370, एक के बाद एक स्टेलर परफॉर्मेंस। एंड नन ऑफ द फिल्म्स हैड अ जौहर, अ चोपड़ा, अ भंसाली और इम्तियाज अली अटैच टू इट। पर आज नेशनल अवार्ड ने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं दी, एक करियर को सर्टिफाई कर दिया। स्क्रीन पर सरनेम नहीं दिखता, सिर्फ परफॉर्मेंस दिखती है। नाउ यामी का करियर आसान रास्तों से नहीं गुजरा, शी हैड टू डू व्हाट एवरीवन डज। लेकिन उनकी पहली फिल्म थी विद अ मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट, सुजीत सरकार। फिल्म का नाम विकी डोनर। लोग इस फिल्म को आयुष्मान खुराना के लिए जानते हैं, बट इस फिल्म की असली स्थिरता यामी थी। इस फिल्म का वो गाना इसने हमें पहली बार बताया था कि एक नई एक्ट्रेस आ चुकी है। द पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम विकी डोनर। दिस इज पानी दा रंग।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 10.

0: जिस दिन धुरंधर 2 रिलीज हुई उसी दिन एक और फिल्म ने आना था, पर वो फैसला बदल दिया गया। कभी कभी एक फिल्म का इंतजार नहीं होता, एक इंसान का इंतजार होता है, और पैन इंडिया सुपरस्टार यश उन्हीं स्टार्स में से एक है। KGF के बाद 4 साल हो गए स्क्रीन पर उन्हें देखे हुए। बीच में टॉक्सिक की रिलीज डेट कितनी बार बदली, कभी शूटिंग का रीजन, कभी प्रोडक्शन का रीजन, कभी दुनिया की सिचुएशन का रीजन, लेकिन ऑनेस्टली ऑडियंस को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए बस एक बात मैटर करती है, दैट यश इज कमिंग बैक, और सिर्फ एक फिल्म में नहीं, 2 फिल्मों में। ऑफ कोर्स रामायण में वो रावण का रोल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मिलेगी टॉक्सिक। और जब इसका टीजर आया था सबके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर टॉक्सिक है क्या, व्हाट इज इट अबाउट? तो चलो इसका जवाब खुद यश से सुन लेते हैं।
1: इन इंडिया वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, बट स्टेट ऑफ इंडिया वाज स्टिल अंडर पोर्चुगीज कंट्रोल टिल 1961. सो द स्टोरी इज सेट इन दैट एरा वेयर इट वाज टाइम वेयर लॉट ऑफ पोर्चुगीज वेयर इंडियंस वर देयर. सो इन बिटवीन दैट there was trade, a lot of port, business. So in that era, if there is struggle for power, greed, and then gangster, you know, all the gangster things can happen with lots of Tommy guns and action. With that, there is a lot of complex human emotions where we there's a deep love story in it, there's a brother-sister sentiment, and also it's a father and son revenge saga. So it's a very interesting package.
0: So setting purane daur ki hai. इसमें गैंगस्टर्स हैं, एक पावर स्ट्रगल है, प्यार भी है, और साथ में रिवेंज भी, यानी एक प्रॉपर लार्जर देन लाइफ सिनेमैटिक मसाला यूनिवर्स। लेकिन टीजर के बाद जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट किया था वो है इस फिल्म का म्यूजिक, क्योंकि विशाल मिश्रा और राजशेखर की जोड़ी जब भी साथ आई है खाली हाथ नहीं गई। एनिमल में पहले भी मैं, एंड देन सयारा में तुम हो तो, और अब टॉक्सिक में तबाही। नाम भी वही, एनर्जी भी वही, और यश के स्क्रीन प्रेजेंस के साथ गाना बिल्कुल उसी स्केल पर सोचता है।

एक वार्निंग दे रहा हूँ, अगर इसका वीडियो देखने वाले हो तो बच्चों को थोड़ा दूर ही रखिएगा। इट्स नॉट सेफ फॉर देयर व्यूइंग। मिर्ची टॉप 20 पर डेब्यूइंग इन द टॉप 10 और नंबर 9 ये है टॉक्सिक का तबाही। नंबर 9।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 8।

0: धमाल इज अ सर्टिफाइड ब्लॉकबस्टर और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत लोग इसे एंजॉय भी करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन वेरी रिसेंटली मुझे एक अजीब सी रियलाइजेशन हुई। बचपन में मुझे कभी समझ ही नहीं आता था कि मम्मी पापा हर बार वही पुराने गाने आखिर क्यों सुनते थे। इतने नए गाने आ रहे थे फिर भी उन्हें सुनना था, मोहम्मद रफी को, किशोर कुमार को, लता जी को, आशा जी को, और तब लगता था शायद वो नए म्यूजिक को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। लेकिन आज समझ आया, कुछ गाने पुराने नहीं होते, हम उनकी उम्र के हो जाते हैं। YouTube पर वीडियो सर्व करते करते अचानक एक वीडियो पे आके मैं रुक गया। किसी शादी में एक वायलिनिस्ट मोहब्बते की धुन बजा रही थी, और जैसे ही ये थीम बजी मैं फिल्म को याद नहीं कर रहा था, मैं अपनी जिंदगी याद कर रहा था। यस, आज देखते हैं तो मोहब्बतें एक बड़ी फ्लॉट सी फिल्म लगती है। प्रीमाइस ओवर द टॉप लगता है, कुछ सीन्स जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक लगते हैं, लेकिन फिर देयर शाहरुख खान, हाथ में वायलिन, कंधे पर स्वेटर और ये ट्यून, और बस सारी क्रिटिसिज्म चुप हो जाती है। यही तो कमाल है कुछ कॉम्पोजिशंस का, वो आपको फिल्म याद नहीं दिलाती, वो आपको आप याद दिला देती है। इस ट्यून का कमाल देखिए, लगभग 25 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी जब ये ट्यून बजती है, वी जस्ट आर ट्रांसपोर्टेड टू दैट टाइम, द शाहरुख खान ईरा, अमिताभ बच्चन एज नारायण शंकर, वो तीन लव स्टोरीज और गुरुकुल की ये कहानी, यू जस्ट नो। लेकिन जिस ईरा में अब हम हैं और जिनके गाने हम सुन रहे हैं, अगर आंख बंद करो तो याद नहीं आता कि फिल्म में क्या हुआ था। टेक द नेक्स्ट सॉन्ग ऑन द काउंटडाउन फॉर एग्जांपल, चुनरी चुनरी, आपको हमेशा सलमान खान और सुष्मिता सेन ही याद आएंगे, नया वर्जन उतना याद नहीं आएगा। और अगर एक और धुन है जो हर बार वक्त को थोड़ी देर के लिए रोक देती है, तो वो है ये कॉम्पोजिशन, हिंदी फिल्म्स के इतिहास के सबसे लेजेंडरी गानों में से एक, एन अनपैरेलल्ड परफेक्ट कॉम्पोजिशन बाय शंकर एहसान लॉय, लिखा है इस देश के सबसे ग्रेटेस्ट पोएट्स में से एक जावेद साहब ने, एंड इट हैज बीन संग बाय द फ्लॉलेस, द परफेक्ट सोनू निगम। मेरा रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक,
1: टॉप 20 रिवाइंड।

एक गाना जब बहुत बड़ा हिट बन जाता है, हम उसे एक्टर के नाम से याद रखते हैं, कभी सिंगर के, कभी फिल्म के, लेकिन उस गाने के पीछे कितने लोग अपनी जिंदगी लगा देते हैं उसकी बात बहुत कम होती है। पिछले कुछ दिनों से सैयारा फिर से डिस्कशन में है। Because the song is out of the countdown after almost 60 weeks, लेकिन इस बार वो अपनी कामयाबी की वजह से डिस्कशन में नहीं है, रॉयल्टीज को लेकर हुई एक पब्लिक कॉन्वर्सेशन की वजह से। एक तरफ है कंपोजर तनिष्क बागची, जिनका कहना है कि उन्हें टाइटल ट्रैक के रॉयल्टीज नहीं मिले। दूसरी तरफ यशराज फिल्म्स ने क्लैरिफाई किया है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सारी पेमेंट्स और रॉयल्टी ऑब्लिगेशंस पूरी की जा चुकी है। देखो सच क्या है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा मिलेगा, हमें नहीं पता। एंड तनिष्क बागची ने वो पोस्ट जो है वो डिलीट भी कर दिया है। लेकिन

0: एक बात मैं जरूर जानता हूँ, जब कोई गाना इतना बड़ा बन जाता है ना जैसे सैयारा वाला, तो वो सिर्फ एक सिंगर का नहीं रहता, ना सिर्फ कंपोजर का रहता है, ना वो फिल्म का रहता है, वो हम सबका हो जाता है। बस उम्मीद इतनी सी होती है कि जिस गाने को इतना प्यार मिला उसे बनाने वालों को भी उतना ही रिस्पेक्ट मिले। और वैसे हर जनरेशन का एक साउंड ट्रैक जरूर होता है, पिछले साल वो साउंड ट्रैक था सैयारा, लेकिन एक रोमांटिक गाना और भी था विच फॉर मी वॉज एट पार विद सैयारा, जिसमें अरिजीत का फिर एक मास्टर क्लास सुनाई देता है, कंपोज्ड बाय द सेंसेशन नोन एज शाश्वत सचदेव, वंस अगेन ऑन नंबर वन, दिस इज गहरा हुआ
1: नंबर वन।

0: इस गाने की गहराई में मैं कितने महीनों से डूबा हुआ हूँ एंड फिर भी आई डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट बट आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस बिकॉज मेरा टाइम अप हो चुका है बट रिमेम्बर आप और मैं यहाँ इसलिए मिलते हैं बिकॉज वी लव आवर मूवीज सो टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट ऑन अनदर एपिसोड ऑफ द मिर्ची टॉक 20 दिस इज सुरेन ओवर एंड आउट
1: Suren ke saath only on Mirchi. It's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi.

Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

मिर्ची, इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बट्टे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ाए ओए।

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

गुड मॉर्निंग माई फेवरेट ह्यूमन, वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स। यहाँ पर कॉफी ऑप्शनल है लेकिन हंसी बिल्कुल कंपलसरी है। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में और अगले कुछ घंटों के लिए तुम्हारी मॉर्निंग का अनऑफिशियल सॉफ्टवेयर अपडेट बन गई हूँ। थोड़ा सा बॉलीवुड, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया एंड होपफुली इतना सारा डोपामाइन कि ऑफिस की आज की मीटिंग्स भी बेरेबल लगने लगेगी। इंडिया में इस टाइम पर मम्मी पूछ रही होती है, बेटा नाश्ता किया? और यहाँ पर जब रिलेटिव्स फोन लगा दे तो पूछते, बेटा तुम्हारे यहाँ तो रात हो रही होगी ना? लेकिन अभी रात नहीं बल्कि सुबह हो रही है मामू, तो बकल अप। अब तुम चाहे ट्रैफिक में हो, सबवे में हो, या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, या फिर परौंठे बनाने की तैयारी कर रहे हो, या फिर अभी तक अपने जैमीज में बेड में बुरीटो बनकर बैठे हुए हो, आज का शो शुरू हो चुका है जहां पर होने वाला है एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड फन फैक्ट्स, गुड वाइब्स एंड अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स एंड बहुत सारी यहां वहां की बातें। एंड ऑफ कोर्स मैं होने वाली हूं विद अ लॉट ऑफ मिर्ची दैट बैंगर्स। फटाक से मुझे फॉलो कर लो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

वैसे तो टाइम ट्रैवल का टिकट फ्री में नहीं मिलता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हर रोज लेकर आती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है प्रिसिला और लेट्स फाइंड आउट कि आज के दिन हिस्ट्री में क्या हुआ था। 1588 में स्पैनिश अर्मारा पहली बार इंग्लैंड के कोस्ट के पास देखी गई थी। 1947 में ENIAC यानी कि ENIAC दुनिया के अर्लिएस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स में से एक अपने नए होम में स्विच ऑन हुआ था। और देखो उस जमाने का कंप्यूटर पूरा रूम ले लेता था, आज फोन पॉकेट में आ जाता है। 1957 में बनी IAEA, फिर 1958 में NASA ऑफिशियली लॉन्च हुई, एक साल एटम्स, अगले साल एस्ट्रोनॉट्स, व्हाट एन अपग्रेड। 1954 में द फेलोशिप ऑफ द रिंग पब्लिश हुई। तो अगर आज भी तुम सेकंड ब्रेकफास्ट के फैन हो, थैंक यू टोल्किन। 1981 में दुनिया ने देखी फेरी टेल रॉयल वेडिंग प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना स्पेंसर की। अराउंड 750 मिलियन लोग देख रहे थे। आज होता तो सबसे पहले इंस्टाग्राम पर कमेंट्स आते फर्स्ट या फिर हु एल्स इज वॉचिंग फ्रॉम न्यू जर्सी। और 1987 में साइन हुआ इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड, साउथ एशिया के हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक चैप्टर। वैसे हिस्ट्री के और फन नगेट्स और बैक स्टेज मस्ती के लिए तो मुझे फॉलो कर सकते हो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: अच्छा आज का एक चैलेंज है, फोन अनलॉक करने से पहले गेस करो इंडिया के मेडल कितने हो गए हैं एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। गुड मॉर्निंग, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग। सबसे पहले मेडल टेबल पर चलते हैं।
1: मिर्ची वॉच इट।
0: कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया अभी भी लीडर बोर्ड पर फुल डोमिनेशन मोड में है। कनाडा सेकंड पे पहुंच चुका है, इंग्लैंड थर्ड पर, और अपना इंडिया, हमारा इंडिया नाइन्थ पोजीशन पर है विथ 12 मेडल्स सो फार, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, 7 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज हैं। वैसे अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, और आज का बिगेस्ट हाई फाई जाता है गुलवीर सिंह को। गुलवीर ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन एवर टू विन अ कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल इन द मेन्स 10,000 मीटर्स, और वो सिल्वर मेडल। इमेजिन 10,000 मीटर्स। मैं तो ग्रोसरी स्टोर में 2 एक्स्ट्रा आइल चल लूं तो भाई मेरी घड़ी मुझसे पूछने लगती है, आर यू ओके बेबी। इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट भी कमाल कर रहे हैं। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता है और शर्मिला धनकर ने पैरा शॉट में तिरंगा बुलंद किया है। साथ ही वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स और पैरा स्पोर्ट्स में हमारे एथलीट्स जो है वो मेडल लेकर इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। तो फिलहाल अगर ट्रैफिक में फंसे हुए ऑफिस जाते टाइम एक बार दिल से बोलो कम ऑन इंडिया। हर मेडल के पीछे पता सालों की ट्रेनिंग होती है, सालों की मेहनत होती है, और उससे भी ज्यादा होता है एक देसी डिटर्मिनेशन। चलो इसी नोट पर अब मिलते हैं ऑनलाइन। बोले तो मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम ऑन सोशल मीडिया, दैट्स इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ। और चलो देखते हैं आज का वेदर मून स्विंग के किस लेवल पर पहुंचा है। अभी फिलहाल टेम्परेचर है 69 डिग्री फारेनहाइट और स्काइज मोस्टली सनी दिखाई दे रहे हैं। मतलब इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए लाइटिंग भी मस्त है और मूड भी मस्त है। लेट मॉर्निंग अराउंड 11 बजे से 1 बजे तक थोड़े पातली क्लाउडी सीन्स रहने वाले हैं, लेकिन शाम के 5 बजे के आसपास रेन अपनी अटेंडेंस लगा सकती है। तो ऑफिस से निकलते वक्त एक छोटा सा अम्ब्रेला या फिर रेन जैकेट कार में रख लेना। फ्यूचर यू विल से थैंक यू। आज का टेम्परेचर रहेगा 68 से लेकर 83 डिग्री फारेनहाइट के बीच में और फील्स लाइक भी ऑलमोस्ट वही रहने वाला है 69 से 83 डिग्री फारेनहाइट के बीच में। और पिछले 24 घंटों में हुई 22 मिलीमीटर्स की बारिश, लेकिन अगले 24 आवर्स में फोरकास्ट में सिर्फ 3 मिलीमीटर्स की बरसात है। मतलब वेदर ने कल पूरी पिक्चर दिखा दी और आज सिर्फ टीजर रिलीज करने वाला है। और गुड न्यूज ये है कि आज का हाई ऑलमोस्ट कल जैसा ही है। कल 81 डिग्री फारेनहाइट था, आज अराउंड 83 डिग्री फारेनहाइट रहने वाला है। तो कोई शॉकिंग प्लॉट ट्विस्ट नहीं आज के वातावरण में, लेकिन तुम अपना परफॉर्मेंस परफेक्ट रखना, लेयर के प्लेयर बनना, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड बाहर जाते वक्त वेयर योर एसपीएफ 50++++ एंड ऑफ कोर्स कीप मिर्ची ऑन विथ यू। मैं बोले तो प्रिसिला तुम्हारे साथ में हूँ ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। फॉलो करो मुझे, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: देखो, अगर तुम्हारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह सुबह ब्रेकिंग न्यूज तुम्हें मिलती है ना, तो तुम्हें ये सुनना बहुत जरूरी है। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ तुम मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब मैं तुम्हें अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स देने वाली हूँ। सबसे पहले अमेरिका में एक प्रपोज्ड सैंक्शंस बिल को लेकर डिस्कशन गर्म है। यूएस सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटॉल ने कहा है कि प्रपोज्ड 100% टैरिफ प्रोविजंस का फोकस इंडिया और चाइना पर है, स्पेसिफिकली रशियन क्रूड ऑयल परचेजेस के कॉन्टेक्स्ट में। अभी ये पॉलिटिकल और लेजिस्लेटिव डिस्कशन का हिस्सा है, तो देखना यह होगा कि आगे क्या डेवलपमेंट्स आती हैं। नंबर टू पर, दिल्ली पुलिस ने अलेजेडली अब्यूसिव ऑनलाइन कॉन्टेंट टारगेटिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के संबंध में FIR रजिस्टर की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से कुछ पोस्ट्स रिमूव या डिसेबल करने और उनसे रिलेटेड अकाउंट्स की डिटेल्स मांगे गए हैं। इन्वेस्टिगेशन फिलहाल जारी है और आगे की अपडेट्स का इंतजार रहेगा। एंड फाइनली नंबर थ्री पर, क्रिकेट से सिर्फ 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट वर्ल्ड को फिर इम्प्रेस कर दिया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I सीरीज में धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने ICC बैटिंग रैंकिंग्स में 230 प्लेसेस की जंप मारी है और अब 48th रैंक पर पहुंच गए हैं। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 विद मी प्रिसला, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। यू कैन कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे तो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। एंड स्पोर्ट्स वर्ल्ड से आ रही है एक खबर जो सिर्फ फुटबॉल नहीं बल्कि बिजनेस को भी ब्लॉकबस्टर स्टोरी दे सकती है। तो सीन कुछ ऐसा है कि फीफा एक नई कंपनी बना रहा है, फीफा फॉरवर्ड एंटरप्राइज, जो फ्यूचर वर्ल्ड कप्स और दूसरे टूर्नामेंट्स के कमर्शियल और इवेंट ऑपरेशंस हैंडल करेगी। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, रिपोर्ट्स के हिसाब से फीफा इस नई कंपनी का 20% तक स्टेक बेचने का सोच रहा है। इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है $20 billion और अगर डील होती है तो अराउंड $4.2 billion रेज हो सकते हैं। टेंशन मत लो, फीफा ने बोला है कि कंट्रोल उनके पास ही रहने वाला है। लेकिन फुटबॉल में ड्रामा सिर्फ 90 मिनट्स तक थोड़ी होता है, बल्कि यूईएफए ने इस प्रपोजल पर कंसर्न्स रेज किए हैं। उनका कहना है कि ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस और फुटबॉल के फ्यूचर कमर्शियल डायरेक्शन को लेकर और क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब कि ट्रांसफर विंडो के बाद अब बोर्ड रूम विंडो भी फुल एक्टिव हो चुकी है। वैसे हम फैंस तो बस इतना चाहते हैं कि मैच टाइम पर हो, वीएआर कम कंफ्यूज करे और हमारी फेवरेट टीम जो है वो ज्यादा से ज्यादा गोल्स मारे। बाकी बिलियन डॉलर मीटिंग उनको मुबारक हो, या फिर तुमको भी स्टेक्स खरीदने हैं। टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। डीएम करो मुझे इंस्टा और एक्स पे, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, और व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

मिर्ची, इट्स हॉट।

A very very happy birthday to everyone celebrating today. All the birthday babies वाली बच्चा पार्टी मैं हूँ प्रिस्सिला तुम्हारे साथ में और अगर आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है तो ऑफिशियली आज का दिन तुम्हारे नाम है. एंड गेस व्हाट, तुम्हारे साथ आज कुछ फेमस लोग भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले बॉलीवुड से संजय दत्त जिन्होंने हमें मुन्ना भाई जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स दिए हैं, उनका भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है. जादू की झप्पी तो बनती आज के दिन. और अगर फॉर्मूला वन के फैन हो तुम तो 2-time वर्ल्ड चैंपियन फर्नांडो अलोंसो भी आज ही के दिन बर्थडे क्लब में शामिल हो चुके हैं. सिटकॉम लवर्स, दिस वन्स फॉर यू. जॉश रैडनर यानी कि टेड मोस्बी फ्रॉम हाउ आई मेट योर मदर भी आज ही आए थे इस धरती पर. और इंडिया के लेजेंडरी इंडस्ट्रियलिस्ट और एविएशन पायनियर JRD टाटा भी आज ही के दिन प्रकट हुए थे. एविएशन पायनियर, विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट और प्रूफ कि स्काई लिटरली इजंट द लिमिट. तो अगर आज तुम कैंडल्स ब्लो कर रहे हो फुल ऑन फ्रेंड्स के साथ या फिर क्वाइटली सिर्फ अपना फेवरेट डिजर्ट एंजॉय करने वाले हो अकेले में, ये याद रखना ये जस्ट अ नंबर और मैच्योरिटी वो तो वैसे भी लाइफ का ऑप्शनल फीचर है. वैसी मॉर्निंग्स पर मेरे यानी कि प्रिस्सिला की तरफ से तुम्हें ढेर सारी बधाइयां फॉर योर बर्थडे, ढेर सारी खुशियां तुम्हारी लाइफ में, अच्छी हेल्थ हो, सक्सेस हो और बहुत सारी हंसी की विशेस मैं तुम्हें देती हूँ. हैव एन अमेजिंग ईयर अहेड. फिलहाल हम कुछ चलाएंगे मिर्चीदार बैंगर्स ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस on Instagram and X, that is MIRCHIPRIS. You can send in your birthday shout outs for yourself or your friend or even send me your cake pictures. WhatsApp ka number note karo 90336 47200. And right now stay tuned and stay hot.

0: हेलो, एंडिंग द सेकेंड आवर ऑफ मिर्ची मॉर्निंग्स विद अ बैंग, यानी कि मिर्ची मॉर्निंग्स पर आने वाली है अब गोल्ड रेट अपडेट। मेरा नाम है प्रिसला।
1: राज वाज विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,020, $4,020 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं और इस साल के बिगनिंग में गोल्ड $5,600 पर ट्राउंस पीक टच कर चुका है। आज करेक्शन के साथ $4,020 पर ट्राउंस डेफिनेटली एंट्री पॉइंट पड़ती है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। 1 ounce, 10 ounce, 100 grams, किलो बार्स, पैम्प सर्टिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर बार्स में इन्वेस्ट करने के लिए राज ज्वेल्स की टीम के साथ कनेक्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: एंड देयर यू हैव इट, मिर्ची मॉर्निंग्स पर सुनी तुमने एक्सक्लूसिव गोल्ड रेट अपडेट With me, Priscilla. Of course, follow me Insta and X पर। मेरा handle है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp का number है 9033 Mirchi, that's 9033647244. For more such updates, stay tuned and stay hot.

राइट, गुड मॉर्निंग. मेरा नाम है प्रिसिला और ये है मिर्ची आवर का 3, जहां पर तुम्हें मिलती है 3 हेडलाइंस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. सबसे पहले, अगर तुम या तुम्हारे दोस्त H-1B वीजा पर हैं, तो ये खबर काफी इंटरेस्टिंग है. US में एक नया बिल प्रपोज हुआ है जो लॉन्ग टर्म इमिग्रेंट्स के लिए ग्रीन कार्ड का प्रोसेस आसान बना सकता है. प्रपोजल के मुताबिक जो लोग 7 साल से ज्यादा US में रह रहे हैं और जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उनके लिए परमानेंट रेजिडेंसी का एक नया पाथवे बन सकता है. बिल अभी प्रपोजल स्टेज में है, तो सबकी नजरें उसके नेक्स्ट स्टेप्स पर बनी हुई है. नंबर 2 पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह और अन्य लोगों के खिलाफ तालाबीरा 2 कोल ब्लॉक एलोकेशन मैटर में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्लोज कर दी हैं. कोर्ट ने CBI के क्लोजर रिपोर्ट्स एक्सेप्ट करते हुए पहले के समन्स ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया है. एक लंबी लीगल प्रोसेस और ये चैप्टर अब ऑफिशियली क्लोज हो चुका है. एंड फाइनली नंबर थ्री पर मिडल ईस्ट से एक इम्पोर्टेंट डिवेलपमेंट. रिपोर्ट के हिसाब से ईरान ने US फोर्सेज को टारगेट करते हुए मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए हैं. US सेंट्रल कमांड ने कहा है कि इनकमिंग मिसाइल्स सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिए गए हैं और किसी भी तरह की कैजुअलिटी या डैमेज रिपोर्ट नहीं हुई है. सिचुएशन पर नजर बनी हुई है और दुनिया नेक्स्ट डेवलपमेंट्स को क्लोजली वॉच कर रही है. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 विद मी प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp ka number hai 9033 mirchi, that's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश।

0: Hey, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. वेलकम टू राशि जोन. चलो देखते हैं कि आज हमारी किस्मत में क्या लिखा है.
1: मिर्ची राशि जोन.
0: एरीज यानी मेष राशि, आज किसी अपने की हेल्प जरूर करो, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी को साइड पर मत रखो. तुम्हारे आइडियाज जो है ना, वो तुम्हारा सुपर पावर है. आज तुम्हारा लकी कलर इज कोरल, लकी नंबर इज 17. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, फन तो कंटिन्यू होता रहेगा बॉस, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी सीन पर मत छोड़ दो. बैलेंस इज द रियल फ्लेक्स ऑफ लाइफ. आज तुम्हारा लकी कलर इज रस्ट कलर, लकी नंबर इज 24. जेमिनी यानी मिथुन राशि, जो सबसे लाउड बोलता है जरूरी नहीं कि वो सबसे स्मार्ट बोलता हो. ट्रस्ट योर ओन ब्रेन टुडे. लकी कलर फॉर यू इज ऑफ वाइट, लकी नंबर इज 9. कैंसर यानी कर्क राशि, फैक्ट्स पे फोकस करो बेबी, फीलिंग्स को स्टीयरिंग व्हील मत बना दो, स्पेशली मनी और वर्क के मैटर्स में. लकी कलर फॉर यू इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 31. लियो यानी कि सिंह राशि, हैप्पी लियो सीजन, स्पॉटलाइट ऑफिशियली तुम्हारे ऊपर आ चुकी है. कॉन्फिडेंस फुल चार्ज पर रखो, बस ओवर एक्टिंग सिर्फ बॉलीवुड के लिए छोड़ दो. लकी कलर फॉर यू इज टील, लकी नंबर इज 1. वर्गो यानी कन्या राशि, कंफ्यूजन टेम्पररी है, अगले कुछ दिन आंसर्स खुद ब खुद तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे. रिलैक्स करो, गूगल मैप्स की तरह लाइफ भी रीराउट कर रही है. लकी कलर फॉर यू इज पर्पल, लकी नंबर इज 14. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. अगर आज के राशि जोन से तुमने रिलेट किया है तो मुझे डेफिनेटली बताना. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप करो मुझे 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244. फिलहाल के लिए चिपक के बैठो यहीं पर. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैनहट्टन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: हेलो, मैं हूँ प्रिसला। तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग। सो चलो जल्दी से देखते हैं बाकी की बची 6 राशियों का आज रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लीब्रा यानी कि तुला राशि, ओवरथिंकिंग को आज अनपेड लीव पर भेज दो। पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। गुड वाइब्स आर कंटेजियस। लकी कलर फॉर यू इज रोज गोल्ड। लकी नंबर इज 22। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, करियर मोड ऑन करो। छोटी छोटी इरिटेशंस को म्यूट करो यार। फ्यूचर पर जूम इन बनाए रखो। लकी कलर फॉर यू इज कोरल। लकी नंबर इज 8। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, एडवेंचर का मूड है, अमेजिंग। बस टीम वर्क को मत भूलना। सोलो हीरो से ज्यादा मजा आता है एंसेंबल कास्ट में, समझे। लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज। लकी नंबर इज 35। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, मनी मैटर्स को आज थोड़ा सीरियसली देखो। स्मार्ट डिसीजन सिर्फ वॉलेट ही नहीं रिलेशनशिप्स भी प्रोटेक्ट करते हैं। लकी कलर फॉर यू इज चारकोल ग्रे। लकी नंबर इज 12। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आज दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनना। कभी कभी अच्छा वाला मोमेंट जो है ना, लाइफ का बेस्ट अपडेट होता है। लकी कलर फॉर यू इज इलेक्ट्रिक ग्रीन। लकी नंबर इज 27। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसीज यानी कि मेन राशि, वर्ल्ड फास्ट चेंज हो रहा है। नए स्किल्स से दोस्ती करो और साथ साथ में अपने आप को अपडेट करो। दैट्स योर रियल ग्लो अप। लकी कलर फॉर यू इज आक्वा टील। लकी नंबर इज 6। एंड देयर यू हैव इट। मेरा नाम है प्रिसला एंड दैट वाज योर राशि जोन पार्ट 2। अगर स्टार्स ने आज तुम्हें स्माइल कराया है तो मुझे बताओ। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून and stay hot. Yeah.

0: जी
1: की गल करनी है
0: तेरे मेरे बारे
1: की
0: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है
1: बचपन दी बात होर सी
0: यार 10 साल हो गए
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूं फोन ते गल करती हूं
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे

और इसी के साथ मेरा शो रैप करने का टाइम आ चुका है। मैं हूँ प्रिसिला, सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स, और आज का लास्ट मिर्ची तो तुम्हें खिलाकर जाऊंगी। चाइना का फास्ट टेलीस्कोप, जिसे प्यार से स्काई आई भी कहते हैं, इसने 1000 से ज्यादा पल्सर्स डिस्कवर करके ग्लोबल रिकॉर्ड बना दिया है। अब अगर सोच रहे हो पल्सर्स होते क्या है, तो सिंपल वर्जन ये है कि ये एक सुपर डेंस सुपर फास्ट स्पिनिंग स्टार होता है जो रेगुलर रेडियो सिग्नल्स भेजता रहता है, जैसे यूनिवर्स का अपना जीपीएस बीकन हो। साइंटिस्ट का कहना है कि ये डिस्कवरीज जो है हमें स्टार्स कैसे इवॉल्व करते हैं मिल्की वे को और अच्छे से समझने में और फ्यूचर के डीप स्पेस नेविगेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। सो इसीलिए चाइना ने बहुत बड़ा वाला काम कर दिया है। और अब एक छोटा सा काम मैं करती हूँ, तुम्हें याद दिला देती हूँ कि तुम्हें मुझे फॉलो करना है। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। अभी मेरे जाने का टाइम है, टाटा बाय बाय, मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस पर। तब तक के लिए यू बी गुड, खाओ पियो ऐश करो, एंड ऑफ कोर्स मिर्ची सुनते रहो, इट्स हॉट।

0: सुबह का टाइम हुआ करता था और स्कूल बस में सब चुप होते थे। क्यों? क्योंकि स्कूल असेंबली के लिए न्यूज जो ढूंढनी होती थी।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. और हाँ, हमारी जिंदगी में ऐसा भी तो एक टाइम हुआ करता था यार। आज की मॉर्निंग्स हम कहते हैं कि वी मस्ट गो स्लो, आराम से कॉफी इंजॉय करो एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन बचपन की मॉर्निंग्स हमारी बहुत तूफानी हुआ करती थी यार। भागम भाग में तैयार होना, भागम भाग में नाश्ता करना, भागम भाग में बस पकड़ना, और फिर फाइनली जब बस में बैठ जाते थे तो सब शांत। क्यों? क्योंकि हम सब ना न्यूज लिख रहे होते थे। मुझे नहीं पता आपके स्कूल में ऐसा होता था कि नहीं होता था, लेकिन हमारे स्कूल में डेफिनेटली होता था कि यार हम सबको ना एक छोटी सी डायरी मेंटेन करनी पड़ती थी। वो डायरी हमेशा हमारी पॉकेट्स में रहा करती थी, एंड उस डायरी के अंदर रोज सुबह हमें न्यूज लिखकर ले जानी होती थी स्कूल, ताकि असेंबली में अगर अचानचूक किसी को बुला लिया जाए, जो कि होता भी था हमारे साथ, हमें न्यूज बोलनी आनी चाहिए ऑन द स्टेज। और इसीलिए सब अपने आप को बचाते हुए हर रोज सुबह बस के अंदर न्यूज ही लिख रहे होते थे, एक नेशनल, एक इंटरनेशनल और एक लोकल। तब ना ये सिस्टम बहुत बोर लगा करता था, बहुत चिड़ होती थी, और दिमाग यही कह रहा होता था कि यार ये रोज सुबह क्या क्या टंडे लगाने पड़ते हैं यार, न्यूज़पेपर घर से लेकर आओ और फिर बस में बैठ के न्यूज टीपो। हमारे घर में ना दो न्यूज़पेपर आते थे इसी चक्कर में, एक जो मैं स्कूल लेकर जा पाऊं जब मुझे न्यूज लिखनी होती थी बस के अंदर, और दूसरा जो घर पे रह जाए ताकि बड़े पढ़ पाए। लेकिन ये जो चिड़न कुड़न बलन थी ना, और जो बोरियत होती थी इन सारे कामों को करते हुए, आज समझ आ रहा है कि ये अच्छी चीज थी यार। जो न्यूज अपडेट रखने की आदत मुझे आज है ना, वो यहीं से तो आई है। वैसे ना लाइफ में और भी ऐसी कई सारी आदतें हैं जो हमें तब तो बहुत ही इरिटेटिंग लगा करती थी, क्योंकि तब करना पड़ता था क्योंकि हम छोटे हैं, लेकिन आज जब वो हमारी लाइफ में एक अच्छे तरीके से इन्वॉल्व है और डिसिप्लिन लेकर आ रही है ना, तो लगता है कि हाँ यार कुछ आदतें अच्छी होती हैं। बताऊंगी आपको थोड़ी देर में उन आदतों के बारे में, लेकिन अभी के लिए मिड मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालने की बारी आ चुकी है। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बस तुम रहते हो।
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: रात में कपड़े प्रेस करके, बैग जमा के, सारी तैयारी करके सोना, ये हमारी बचपन की आदत थी। और जब रात में ये सारे काम करने पड़ते थे ना, आधी नींदों में थके हुए होते थे फिर भी, क्योंकि अगले दिन स्कूल है, तो बहुत आलस आता था यार। मम्मा इतना बोल बोल के, पुश कर करके हमसे काम करवाती थी ताकि अगली सुबह हम स्कूल जाने के लिए लेट ना हो जाए। लेकिन ये आदत ना आज बड़ी अच्छी लगती है।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और बचपन की कुछ आदतें जो तब तो हमें लगता था कि बड़ी फोर्स्ड है, हम बड़े बेमन से किया करते थे, लेकिन आज लगता है कि यार अच्छा हुआ जो ये सब सीख गए, काम में आ रही है। उनमें से एक यही है, रात में सुबह की तैयारी करके रख लेना सारे कामों की। और उसमें से स्पेशली कपड़े प्रेस करने वाली जो आदत थी हमारी, ये बड़ी सही काम आ रही है यार आज के टाइम पर। मतलब मैं तो अब उन लोगों को भी बड़ा प्रेस करती हूँ जो मैं तो कर ही रही हूँ, लेकिन खुद भी इस आदत को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लोग इस आदत को भूल भी जाते हैं। लेकिन आज भी जो लोग इस आदत पर अपना पूरा ध्यान फरमाते हैं, वो मेरा ध्यान भी ले जाते हैं। और ऐसे लोगों को देखकर समझ में आता है, हाँ ये इंसान जो है ना, ये बड़ा डिसिप्लिन्ड है। सो जो कहाँ की चीज कहाँ जोड़ के हम इंसान की पर्सनालिटी ट्रेट निकाल लेते हैं कि ये इंसान डिसिप्लिन है, क्योंकि ये रात में अपने कपड़े प्रेस करके सोता है। हाँ ये बात सच्ची है कि मुझे वो लड़की पसंद है जो रात में अपने सुबह की तैयारी कर लेते हैं। इनफैक्ट पता है आज भी मेरे साथ ऐसा होता है कि अगली सुबह की जब तैयारी कर रही होती हूँ ना, रात में अपने कपड़े वपड़े प्रेस करके रख रही होती हूँ, तो ऐसा फील आ रहा होता है जैसे कि स्कूल की तैयारी कर रही हूँ। आज तक ये फील कभी नहीं आया है कि मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे ऑफिस जाने की या कहीं बाहर जाने की तैयारी करनी पड़ रही है। आज भी स्कूल वाला ही फील आ रहा होता है, जो फील शायद आपको भी समझ आए, जो सुबह भी आता है। अगर कभी ऐसा होता है कि हम अपने रूटीन से पहले सुबह सुबह उठ जाते हैं किसी काम के चलते, तो ऐसा लगता है जैसे स्कूल जाने के लिए उठे। यू कैन टेक द किड आउट ऑफ द स्कूल, लेकिन यू कैन नॉट टेक द स्कूल आउट ऑफ दैट किड, जो आज भी हमारे अंदर कहीं बसा हुआ है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आजकल जो हम हमेशा अपने साथ एक बॉटल रखते हैं कैरी करते हुए, हमें लगता है कि हम बॉलीवुड को कॉपी कर रहे हैं. नो वेज, ये आदत हमारे बचपन की है.
2: आज की बार 90s के साथ.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और ये आदत हमने स्कूल से सीखी है यार, जब रोज बॉटल भरकर ले जाना हमारे लिए लाजमी हुआ करता था. इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा लगता था कि यार ये बॉटल और कैरी करनी पड़ती है, क्योंकि वो लटकाने वाली बॉटल होती थी, कैरी करने वाली बॉटल नहीं हुआ करती थी. हमेशा एक बॉटल हमारे गले में लटकी रहती थी, कंधे पे लटकी रहती थी, या कैसे भी करके उसे हमें कैरी तो करना ही होता था. तब बड़ा जोर आता था, लेकिन अब लगता है कि यार ये जो स्किन के हाइड्रेशन के लिए आदत पड़ी है ना, ये बड़ी सही पड़ी है यार. हमें लग रहा होता है कि हमने बॉलीवुड से ये सारी चीजें सीखी हैं, लेकिन नहीं बाबा, हमने ये आदत जो है ये बचपन में ही सीख ली थी. टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड स्कूल में टीचर्स कब से कहा करती थी यार. और अब जो हमें ये बोझ नहीं लगता है ना कि हमें बॉटल भी कैरी करनी है, वो इसी वजह से, क्योंकि बचपन में हम इसके ऑलरेडी आदि और इत्यादि हो गए थे. बॉलीवुड ने सिर्फ और सिर्फ इन बॉटल्स को थोड़ा फैंसी कर दिया है, लेकिन ये जो आदत है ना, इसका क्रेडिट बॉलीवुड को नहीं दे सकते बॉस, बचपन को देना जरूरी है. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. On Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: ये जादू नहीं है तो और क्या है यार। मतलब वाकई में छोटी छोटी रातें जो है वो लंबी हो जाती है, लेकिन ये जो छोटी रातें लंबी होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत में नहीं होती है, ये एक्साइटमेंट में भी छोटी रातें जो है वो लंबी हो जाती हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमें ट्रैवल करना होता है, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होती है ना, तो अगली सुबह के चक्कर में हम रात भर नहीं सो पा रहे होते हैं और वो रात जो है वो अपने आप लंबी हो जाती है। या तो एक्साइटमेंट होता है या तो एंजाइटी होती है, और मुझे तो कभी कभी दोनों ही होता है, और उस चक्कर में मेरी भी छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि मुझे मोहब्बत है, लेकिन नहीं, आई एम नॉट कैचिंग फीलिंग्स, आई एम जस्ट अबाउट टू कैच अ फ्लाइट। दैट्स द रीजन कि मेरी छोटी रात लंबी हो गई है।
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अब मेरे यारा, मान ना मान करो गानों की पहचान। दो गानों के मिक्सेस को आपके लिए चला देती हूँ, आपको सुना देती हूँ, और आपको बताना होता है कि ये जो दो धुनें आपने सुनी कौन से गानों की है। तो आज का जो मिक्स है वो है कुछ यूं। बस जी, अब आपको डीएम करना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और बता देना है कि इन दो गानों के नाम क्या हैं। और स्टे ट्यून रहिएगा विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Mirchi, it's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: No Entry, एक ऐसी फिल्म जिसका नाम तो No Entry था, लेकिन सबको इस फिल्म को देखने के लिए एंट्री चाहिए थी।
0: मिर्ची, VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, ये फिल्म इतनी मजाकिया और इतनी मजेदार थी ना, मतलब जिंदगी में कुछ भी बवाल चल रहा हो, इस फिल्म को देखते देखते सबने अपनी हंसी निकाली और उस बवाल को उस हंसी में उड़ा दिया है। लेकिन आपको इस फिल्म में वो वाला सीन तो डेफिनेटली याद होगा जहाँ पर फरदीन खान, अनिल कपूर एंड सलमान खान एक ही क्लिप से लटक गए थे एक के बाद एक। ओरे बाप रे बाप, मतलब दिस सीन इज अ मिक्स ऑफ एंजाइटी एंड ह्यूमर। मुझे भी एंजाइटी हो रही थी इस चीज को लेकर कि ये कहीं गिर ना जाए यार, और ह्यूमर भी इतना था यार इस सीन के अंदर कि थोड़ी देर के लिए टेंशन लेने के बाद मैं हंसने लग जाया करती थी कि यार ये क्या ही कर रहे हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन्स की बात ये है कि ये सीन जितना मजाकिया देखने में लग रहा था ना, उतना शूट करने में मजाकिया नहीं था, बिकॉज दिस वॉज एक्चुअली अ वेरी टफ सीन टू शूट, क्योंकि इनको वाकई में ये सीन एक क्लिफ से लटकते हुए शूट करना पड़ रहा था एंड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए रिग केबल्स अटैच करनी जरूरी थी, बिकॉज वो जो टेरेन था वो बड़ा स्टीप था। अब ये सारे सीन्स शूट करने के बाद ये जब सीन निकल के आया तो भाई फुल पैसा वसूल था ये सीन। और एक मजे की बात सुनो, ये जो सीन जिस स्पॉट पे शूट हुआ था ना फुकेट में, जहां पर ये तीनों के तीनों एक क्लिफ से लटके हुए थे, इस फिल्म के बाद और इस फिल्म की सक्सेस के बाद इस सीन का नाम ही नो एंट्री स्पॉट रख दिया गया था, अंटिल अ सुनामी वॉश दैट स्पॉट अवे। हाँ, वो स्पॉट कभी हुआ करता था मगर आज नहीं। मगर हाँ, इस स्पॉट को आज भी हम फिल्म में जरूर देख सकते हैं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सल्लू भाई के डोले तो बड़े है ही हैं, साथ ही साथ उनका दिल भी बहुत बड़ा है यार।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And जब No Entry the movie was being shot ना, at that time, Anil Kapoor of course was the main lead of the film, everybody knew. लेकिन फिर भी सलमान खान ने इस फिल्म को करने के लिए हाँ करी, because जब बोनी कपूर ने उनको ये स्क्रिप्ट दिखाई, तो सलमान खान को ये स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि वो किसी ना किसी तरीके से इस फिल्म का हिस्सा बनना चाह रहे थे। और जबकि उनका रोल छोटा था, फिर भी उन्होंने अपने इस रोल को निभाने के लिए मुझसे शादी करोगी की शूट एंड नो एंट्री की शूट में बहुत जागल किया। मतलब कभी वो यहाँ होते थे, कभी वो उस सेट पे हुआ करते थे। एंड इन फैक्ट जो क्रू थी इस फिल्म की, वो भी हमेशा ऐसी रहती थी कि यार कभी भी सल्लू भाई आ सकते हैं अपनी शूट करने के लिए, अपनी शूट कंप्लीट करने के लिए, उनको जहां मौका मिलेगा वो आ जाएंगे। तो वो हमेशा स्टैंड बाय पे रहा करते थे। इनफैक्ट सलमान खान वॉज द वन, जब नो एंट्री की शूट के डिलेज हो रहे थे, तो उन्होंने बोनी कपूर को कहा कि यार पैसों के बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपना काम और अपनी फिल्म खत्म करने के बारे में बात करो, और पैसा वैसा जो भी है ना वो हम देख लेंगे। यानी कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो फाइनेंशियल बैकअप की जरूरत थी, वो उस वक्त सलमान खान ने बोनी कपूर को जरूर दिया था। वहीं अगर बात की जाए फरदीन खान की, तो ये बड़ी मजेदार वाली चीज है यार। मतलब फरदीन खान को कास्ट तो कर लिया था मूवी के लिए, लेकिन जब इनिशियल शूट्स हुए तो अनीस बाजमी को समझ में आ गया था कि यार फरदीन खान की कॉमिक टाइमिंग जो है ना वो थोड़ी डिलेड है, उनके रिएक्शंस थोड़े लेट आ रहे हैं, क्योंकि ये कॉमेडी एक्टर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फरदीन खान को अनीस बाजमी ने इतना स्पेस दे दिया कि उन्होंने उनके कैरेक्टर को ही उस हिसाब से डिजाइन कर दिया, ताकि फरदीन खान की एक्टिंग के साथ उनके कैरेक्टर के रिएक्शंस जो है वो ट्यून इन हो पाए। एंड जो फरदीन खान का कैरेक्टर ऑन स्क्रीन ऐसा दिखाया गया है ना कि स्लो है और स्लो रिएक्शंस देता है, वो बेसिकली उनकी एक्टिंग के टोन से एडजस्ट करते हुए उनके कैरेक्टर को बना दिया गया था। इसे कहते हैं अकल। रिकास्ट करने से तो यही अच्छा था कि कैरेक्टर को ही कास्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ट्यून कर दिया जाए। और इसी के चलते फरदीन खान की कॉमेडी फिल्मों में भी दुकान खुल गई यार। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बिपाशा बसु जो नो एंट्री में इतना छा गई थी, क्या आपको पता है वो नो एंट्री में होने ही नहीं वाली थी।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, बिपाशा बसु का जो कैरेक्टर था, that was supposed to be played by प्रियंका चोपड़ा। लेकिन फिर हुआ ये कि प्रियंका चोपड़ा को बैकआउट करना पड़ गया, क्योंकि वो मुझसे शादी करोगी की शूट में बिजी थी और नो एंट्री की शूट पे नहीं आ पा रही थी। तो उन्होंने जो एडवांस भी लिया था वो भी उनको वापस करना पड़ गया था। लेकिन बिपाशा बसु की जैसे ही एंट्री हुई, एक्चुअली हुआ ये कि इतनी लास्ट मिनट एंट्री हुई ना कि वो एक वेकेशन से लौटी थी और उन्होंने वजन बढ़ा लिया था। अब ये जो कैरेक्टर उनको प्ले करना था वो तो हम सबको ही पता है कि बड़ा हॉट एंड सेक्सी कैरेक्टर था। इनफैक्ट इन एन इंटरव्यू कहीं जॉन अब्राहम को मैंने ये भी बोलते हुए सुना था कि बिपाशा जो थी वो बीमार भी पड़ गई थी, जिसकी वजह से उनके वर्कआउट्स और डाइट्स जो है वो पूरी तरीके से कम्प्लीट ही नहीं हो पा रहे थे। यानी कि हुआ था सोने पे अभागा। लेकिन फिर भी इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए बिपाशा बसु ने पूरी मेहनत करी और पूरी कोशिश करी कि वो कामयाब हो पाए। एंड इनफैक्ट वो कामयाब हुई भी। आज भी हमें बिपाशा बसु का वो कैरेक्टर इन नो एंट्री स्टिल याद है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बचपन से हम इस गाने को गुनगुनाते आए हैं और आज इसकी धुन की सच्चाई सामने आ गई है।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: त्रिदेव का ये गाना।

अब आप भी सोच रहे होगे कि क्या यार सारा, दोनों धुने एक के बाद एक बजा दी, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली दो अलग अलग जगहों से उठाई हुई धुने हैं। एक तो जो मैंने आपको सुनाई वो त्रिदेव की थी, एंड ये जो म्यूजिक जहां से इंस्पायर्ड है, रादर कॉपीड है, इज मायमी साउंड मशीन का द रिदम इज गोना गेट यू। यार वैसे तिरछी टोपी वाले ने तो शौक से एज अ फैशन स्टेटमेंट ये टोपी पहनी थी, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर विजू शाह ने तो पूरी ऑडियंस को ही टोपी पहना दी। वाह, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: Sara ka deewana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: लकी अली एंड सुनिधि चौहान की आवाज में दिस गाना इज फ्रॉम द फिल्म सुर, जो कि कैसेट के साइड बी का चौथा गाना है।
1: मिर्ची 90s कैसेट।
2: आ भी जा, ये गाना मुझे बहुत खूबसूरत लगता है यार। हालांकि गाना थोड़ा सैड है, मेलैंकली है इस गाने के अंदर, लेकिन ये गाना जो है ये पॉजिटिविटी की बात कर रहा होता है, क्योंकि इस गाने में यही गाया गया है कि आ भी जा ए सुबह आ भी जा, और रात को कर विदा दिल रुबा आ भी जा। यानी कि हम जो वो टनल के एंड में एक लाइट ढूंढ रहे होते हैं ना, दिस गाना इज समवेयर अराउंड दैट फैक्ट ओनली। अब ये सुबह ना किसी के लिए मोहब्बत हो सकती है, ये सुबह किसी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये सुबह किसी के लिए सिर्फ और सिर्फ जीने की एक वजह हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि इंसान कौन सी सिचुएशन में, और उस सिचुएशन के हिसाब से उस इंसान के लिए ये सुबह क्या मायने रखती है। इस गाने में हालांकि मोहब्बत के बारे में बात की गई है, और तभी ये कहा गया है कि मैं हूँ गगन तू है जमीन, अधूरी सी मेरे बिना, रात को कर विदा दिल रुबा भी जा। लेकिन वही वाली बात है कि हम लाइफ में अभी फिलहाल किस चीज को रोमांटिसाइज कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज है जो हमें चाहिए और तहे दिल से हम उस चीज के लिए दुआएं कर रहे हैं। मेरी दुआ भी आपके लिए है कि आपकी वो दुआ कबूल हो जाए और जाते जाते यही गाना हो जाए। क्या बोलते हो, ये गाना आपके लिए लगाती भी जा रही हूँ। एंजॉय द ट्रैक, एंड मैं अब कह देती हूँ कि हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, और यहाँ के अलावा मिल जाइएगा मुझे ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। Stay tuned to Mirchi, cause it's hot.
1: Radio Mirchi, it's hot.
3: Mirchi, it's hot.

ऐसे ढूंढ के चुन के मैं दो लोग लाई हूँ आज बात करने के लिए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। यस, पुरानी जीन्स पर आज हम ऐसे दो लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो पोल्स अपार्ट हैं, एकदम अलग अलग दुनिया, मतलब दुनिया एक ही है, फिल्मी दुनिया लेकिन अगर उनकी पर्सनालिटीज के बारे में आप सोचें तो वो बिल्कुल ही नॉर्थ एंड साउथ हैं। देखिए, एक तो अपने संजू बाबा संजय दत्त, 80s वाले संजय दत्त या बचपन वाले संजय दत्त, और दूसरे हैं द लेजेंडरी, द वेटरन कॉमेडियन जॉनी वॉकर साहब। है कोई तालमेल, कोई कॉमन पॉइंट? वैसे मैं सोच रही थी बाय चांस इन्होंने किसी फिल्म में साथ में काम किया है, मुझे तो ध्यान में नहीं आ रहा है। इफ यू कैन थिंक ऑफ इट यू कैन टेल मी इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स करके, डीएम करके @rj.charu rj.charu ये मेरा आईडी है। तो इन दोनों लोगों के बारे में हम बात करेंगे, फिलहाल बातों पे ब्रेक, इट इज अ म्यूजिकल ब्रेक। ये गाना सुनेंगे पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: 98.3 98.3 98.3
0: मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।
1: फिल्मों से भी ज्यादा फिल्मी लाइफ वाले संजू बाबा, ऐसा सुनने में आता है कि जब ये 3-4 साल के थे और नरगिस जी के साथ अपनी मम्मा के साथ अपने फादर सुनील दत्त को विजिट करने उनकी एक फिल्म के सेट पर गए थे। ये फिल्म थी 1963 की मुझे जीने दो, जो डाकुओं के ऊपर थी। सुनील दत्त साहब इसमें एक्ट भी कर रहे थे, इसके प्रोड्यूसर भी थे। इस फिल्म की शूटिंग हुई थी मध्य प्रदेश की चंबल घाटी में, और एक बार तब के एक फेमस डाकू इस फिल्म के सेट्स पर पहुंच गए थे और छोटे से संजू बाबा किडनैप होते होते बचे थे।
2: कोशिश की थी, रूपा डाकू उस टाइम पे ऑपरेट करते थे, तो दत्त साहब को मिले, मैं छोटा था, मेरे को गोद में बिठा लिया और दत्त साहब को पूछे कि आपने पिक्चर में खर्च कितना किया अभी तक। उन्होंने बोला 10-15 लाख रुपए। बोले अगर इसको उठा के ले जाए कितना देंगे, तो हंसी मजाक से मुझे उठा लिया उस दिन, पैकअप मम्मी और मेरा बॉम्बे। तो ये सही था, किडनैप नहीं हुआ, लेकिन
1: डाकुओं को आइडिया तो आ ही गया था। और मैं यानी कि चारू वापस आती हूँ थोड़ी देर के बाद यही
0: पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: सागर में आज यार का जलवा दिखा दिया, जालिम मेरी शराब में ये क्या मिला दिया।
1: ये गाने के लिरिक्स हैं भाई।
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।
1: 1971 की फिल्म रेशमा और शेरा, जिसमें सुनील दत्त, वहीदा रहमान, अमिताभ बच्चन थे, और इसी फिल्म का ये गाना मतलब कव्वाली, जिसमें पहली स्क्रीन अपीयरेंस हुई थी संजू बाबा की। जी 1981 की रॉकी नहीं, ये वो फिल्म थी जिसमें 10-11 साल के संजू बाबा पहली बार दिखाई दिए थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था,
3: रेशमा और शेरा में एक गाना था उसमें मैंने वो काम किया था, छोटा सा था। ये महबूब स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी और डैडी को एक लड़का मिला था, दूसरा नहीं मिला था, तो मैं मिलने आया हूँ उनको, तो मम्मी के साथ, तो उन्होंने बोला यार इसको कपड़े पहनाओ, इसको यहाँ बैठाओ यार जल्दी से। अरे बाप रे ये क्या हुआ, उन्हें सिर्फ हाथ ऐसे करना है और पापा को देखना है, और जब मैं ये बोलूँगा ना ये जो गाने में आ रहा है शेर, तो ऐसे करना है, वाह वाह वाह वाह। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि मुझे उस वक्त समझ नहीं आया था, लेकिन कैसे भी करके हो गया।
0: जालिम मेरी शराब में ये क्या मिला दिया, रेशमा और शेरा से। यूट्यूब पे जाके देखो छोटे से संजू बाबा। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची।

पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची मिर्ची इट्स हॉट पुरानी जीन्स विद चारू ओनली

0: बाबा में बाबा संजू बाबा
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और बचपन से ही बैड बॉय हैं। एक बार एक इंटरव्यू में इन्होंने किस्सा शेयर किया था कि क्या होता था जब इनके फादर सुनील दत्त से प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स इनके घर मिलने आते थे।
2: एक वेरांडा हुआ करता था, वो सब प्रोड्यूसर्स बैठ के सिगरेट पी के बाहर फेंकते थे और मैं लेट के नीचे वो सिगरेट उठा के पीता था। तो एक दिन दत्त साहब ने बोला कि वहाँ से धुआं कैसे निकल रहा है यार। तो उन्होंने झाँक के देखा तो मैं लेटा हुआ सिगरेट पी रहा था। तो उस दिन के बाद मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। मैं बोर्डिंग स्कूल लॉरेंस स्कूल सनार में था 11 साल।
1: वहाँ भी इनकी शरारतें कम नहीं हुई, लड़कियों को लव लेटर्स लिखते थे ये।
2: लेटर्स तो मतलब मैं 15 को लिखता था, मैं बोलता था एक तो फंसेगी।
1: वैसे अपनी शरारतों के लिए इन्हें अपने मम्मी पापा से खूब डांट मार पड़ी है। खास करके मम्मा से किस तरह की मार पड़ती थी एक बार इन्होंने बताया था।
3: और माँ वो मतलब क्या वेस्टर्न पिक्चर देखी है क्या कभी, गुड बैड एंड अगली? और हाँ, तो वैसी थी वो चप्पल फेंकने में। वो लोग यहाँ से गन उतारते तो वो यहाँ से चप्पल।
1: लो बताओ, मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।
1: और संजू बाबा बचपन से बिगड़े दिल शहजादे ऐसे कैसे बन गए, एक बार एक इंटरव्यू में इनके फादर लेट सुनील दत्त साहब ने शेयर किया था।
2: हमारी तरफ से भी और इनके मामू जान की तरफ से भी, दोनों तरफ से एक प्यार मोहब्बत इतना ज्यादा था कि जो ये चाहते थे मिलता था इनको। और ये मेरा ख्याल है कि जिंदगी में मैंने इतनी नाज बर्दारी किसी की नहीं की होगी जो मैंने संजय दत्त साहब की। इसके अंदाज जो थे बिगड़ने के, कि एक बार इसके मन में कुछ चीज आ जाए कि ये मुझे करना है तो फिर तो इसको कोई रोक नहीं सकता। एक बार हम इटली में थे तो ये साहब कोई 3.5 साल के होंगे, वहाँ पे बाजार है विया वेनेतो, तो वहाँ बाहर ही रेस्टोरेंट होती है जहाँ काफी वक्त की जाती है। इसने कहीं देख ली घोड़ा गाड़ी तो इसने शोर में जाना शुरू कर दिया, मुझे तो घोड़ा गाड़ी पे जाना। तो हम किसी का इंतजार कर रहे थे, मीटिंग थी किसी के साथ, तो हमने कहा आप घोड़ा गाड़ी पे नहीं जा सकते, अब किसी को मिलना है। तो इसने सड़क के ऊपर लौटना शुरू कर दिया, वो औरतें देख रही है, इटालियन औरतें देख रही है, वो माय गॉड व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रूअल पेरेंट्स दिस पीपल आर, एक बच्चे को रुला रहे हैं, वो लौट रहा है तब भी उसकी परवाह नहीं कर रहे। तो मेरी बीवी को बड़ी शर्मिंदगी हुई इस बात में। इतने में बाई चांस वो आदमी आ गया, इटालियन था जिसके साथ हमारी मीटिंग थी। कहते क्या हो रहा है, मैंने कहा कि भाई मेरा बच्चा जो है घोड़ा गाड़ी पे जाना चाहता। सो कहते देन वी विल हैव अ मीटिंग इन द घोड़ा गाड़ी इटसेल्फ, सो ही वाज सिटिंग विद द कोचवान एंड वी वर हैविंग अ मीटिंग इन द घोड़ा गाड़ी।
0: समझ में आ रहा है कि हमारे बाबा बचपन से बाबा ही क्यों रह गए। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्च।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

0: संजू बाबा ने भाई बन के फिल्मों में विलन्स का बैंड तो बहुत बजाया ना।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।
0: लेकिन बचपन में उन्हें ड्रम्स, बोंगो ये सब बजाने का भी बहुत शौक था। एक बार एक टीवी शो में उनके फादर लेट सुनील दत्त, सिस्टर्स नम्रता और प्रिया दत्त ने उनके इस म्यूजिक के शौक के बारे में कुछ शेयर किया था।
2: बट ड्रम सेट,
3: हाँ ड्रम सेट था, कुछ
2: गिटार
3: भी था।
2: यूज्ड टू बी, इट वाज लाइक अ अलार्म, एक बार भैया एक ही ट्यून बजाते थे, दैट वाज द स्कूल बैंड।
4: 71 में जब बांग्लादेश हम गए तो हमारे साथ लता जी, इतनी बड़ी सिंगर, तो इसने बड़ा इंसिस्ट किया, इसने कहा कि मुझे भी जाना है। तो मैंने कहा तुम जा नहीं सकते हो क्योंकि उसमें सब कलाकार जा रहे हैं, ये स्कूल से आया था छुट्टियों में, तो तुम्हें कुछ ना कुछ प्ले करना पड़ेगा। तो इसने कहा जी मैं बांगो बजाऊंगा। तो हम इसको ले गए, तो अब लता जी जब आई स्टेज के ऊपर गाने के लिए तो सारे म्यूजिशियंस थे, तो इससे ये गाते गाते रुक गई क्योंकि बांगो जो गलत बज रहा था।
0: तभी से लाइफ का उल्टा पुल्टा बैंड बजा रहे हैं ये। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची।

Mirchi. It's hot. Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.

प्यार लव इश्क मोहब्बत के साथ वेलकम वंस अगेन। आप सुन रहे हैं मिर्ची पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और आज हम ऐसे दो पोल्स अपार्ट लोगों की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने संजू बाबा संजय दत्त की बात की, बचपन में वो कैसे थे, ऑफ कोर्स बहुत शरारती थे, आउट ऑफ कंट्रोल थे, और कैसे उनकी पहली फिल्म एक्चुअली रॉकी नहीं रेशमा और शेरा थी जिसमें उन्होंने सा छोटा सा रोल किया था एज अ चाइल्ड एक्टर। नाउ द अदर आइकॉनिक एक्टर जिनके बारे में हम अब थोड़ी देर के बाद बात करने वाले हैं, वो थे जो पहले बॉम्बे में एक बस कंडक्टर थे और वो अपनी बस की सवारियों को बहुत एंटरटेन करते थे। उनकी ऐसी कुछ हरकतें एक फिल्मी हस्ती ने नोटिस कर ली और उनकी एंट्री हो गई फिल्मी दुनिया में। आई एम टॉकिंग अबाउट जॉनी वॉकर साहब। करते हैं बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। फिल्मों में एक शराबी इंसान का रोल निभाने की महारत जिनको हासिल थी वो थे एक महारथी कॉमेडियन बद्रुद्दीन जमालुद्दीन काजी साहब, यानी कि जॉनी वॉकर साहब। और एक बहुत पुराने इंटरव्यू में सुनिए, जब उनसे पूछा गया था कि भाई क्या उनका कोई ऐसा थिएटर का बैकग्राउंड था जो वो फिल्मों में आए थे।
1: नहीं, कुछ नहीं, कभी काम नहीं किया, सवाल ही पैदा नहीं होता। इंदौर से थे हम लोग और खाली सिनेमा देख देख के मुझे शौक हो गया था, तो चाहता था शुरू से कॉमेडियन बनना ही। और हम लोग रहते थे इंदौर में, लेकिन वहाँ तो कोई फिल्म का कोई सिलसिला था ही नहीं। कोई इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुंबई आना हो गया फैमिली के साथ। ये 1942 में फैमिली के साथ फादर यहाँ आ गए थे, तो यहाँ आने की वजह से यहाँ मुझे कोई रास्ता मिल गया और काम भी मिलना शुरू हो गया। उसमें कामयाबी भी अल्लाह ने दे दी, सिलसिला चलता रहा बस।
0: और कौन से ऐसे कॉमेडियन थे जिनको देख कर ये इंस्पायर हुए?
1: कि उस जमाने में नूर मोहम्मद चार्ली करके हुआ करते थे, उनको मैं देखता था और उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर था मैं, इसलिए मैंने ये उनको पकड़ के और कॉमेडी की तरफ रागिब हुआ और कॉमेडी करना चाहे।
0: और एक्चुअली क्या ही कॉमेडी करते थे भाई, जैसे ही स्क्रीन पे आते थे मजा आ जाता था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: अमोरे मियो तो वे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: भाई 1940s और 50s में फिल्मों में काम करना, ऊपर से एज अ कॉमेडियन काम करना, मतलब मस्खरी करना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बहुत बड़ा ये टैबू माना जाता था। तो क्या लेजेंडरी कॉमेडियन जॉनी वॉकर साहब की फैमिली इससे ओके थी? सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में इन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मेरे घर वाले भी कभी नहीं चाहते थे कि मैं इस फिल्म लाइन में दाखिल हो जाऊं, लेकिन फैमिली बहुत बड़ी थी, 10 बहन भाई, फादर मदर 12 आदमी थे, और बम्बई में 12 आदमी और अकेला मैं चलाने वाला चक्कर, तो इसलिए बड़ा मुश्किल काम था और बड़ी मेहनत करना पड़ी थी। वालिद को पता चला कि ये मैंने तो फिल्म में काम शुरू कर दिया, तो वालिद ने पहले तो मुझे मना किया, फिर मैंने कहा नहीं, आप बेफिक्र रहिए, कोई ऐसी गड़बड़ नहीं होगी और आप मुझे काम करने की इजाज़त दे दीजिए। अब वो मेहनत इतनी ज्यादा थी कि वालिद को मुझ पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आ गया था।
0: भाई वालिद साहब का ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल वाजिब था। एंड वो सारे अमेजिंग गाने जो जॉनी वॉकर साहब पे पिक्चराइज हुए,
1: गुरुदत्त जी ने भी गाना दिया मेरे को, तो वो गाने भी सब इधर है। उसके बाद रफी साहब ने मेरे लिए गाने इतनी अच्छी तरह गाए कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, ऐसा लगता था कि मैं ही गाने गा रहा हूँ।
0: तो चलिए इन्हीं पे पिक्चराइज एक क्यूट सा गाना सुन लेते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: द लेजेंडरी आइकॉनिक कॉमेडियन जॉनी वॉकर साहब की पैदाइश इंदौर की थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन फिर कुछ हालात ऐसे बने कि इंदौर से उन्हें बॉम्बे शिफ्ट होना पड़ा। सुनिए इस बारे में और अपने वालिद साहब के बारे में। एक बार एक पुराने इंटरव्यू में जॉनी वॉकर साहब ने क्या शेयर किया था।
1: टेक्सटाइल में थे मेरे वालिद, बॉम्बे में भी आए इसलिए थे कि वो टेक्सटाइल के थे स्पेशल। तो वो यहाँ जब आए तो सितारा ऐसा गर्दिश में था उनका कि इंदौर भी छूटा इसलिए था कि वो मिल लिक्विडेशन में चला गया। बहुत बड़ी कंपनी थी, टेक्सटाइल किंग ऑफ इंडिया बोले जाते थे वो। तो उनका दिवाले निकल गया। वालिद को यहाँ पर भी नौकरी मिली। अब सितारा मैंने बताया ना आपको, गर्दिश में था तो जिस मिल में काम करते थे उसका भट्टा बैठ जाता था और वो बंद हो जाता था किसी वजह से। तो 3-4 मिल यहाँ बंद हो गए, बीच में गैप आ गया जहाँ वालिद को मेरे नौकरी बहुत अच्छी मिल गई। वरंगल में हैदराबाद नवाब का मिल था तो उनको वहाँ चांस मिल गया। जब उनको ये हैदराबाद की ऑफर आई तो मैंने सोचा कि ये हैदराबाद नवाब का तो दिवाला निकल सकता ही नहीं है। तो ये सोच के मैंने कहा कि चलो भाई आप उधर चले जाइए और मैं यहाँ बॉम्बे में रहूंगा। मैं
0: भाई किस्मत ने जिसको जहाँ पहुँचाना होता है पहुँचा ही देती है। जैसे बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी इंदौर से निकलकर बॉम्बे पहुँच गए, जॉनी वॉकर बन गए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: ऐसा सुनने में आता है कि बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी के एक ड्रंकट मैन, एक शराबी इंसान के एक्ट से गुरुदत्त इतने इंप्रेस हो गए कि उनको जॉनी वॉकर नाम दे दिया। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। यस, द आइकॉनिक लेजेंडरी कॉमेडियन जॉनी वॉकर साहब, गुरुदत्त की फिल्में और कैसे उससे वो आगे बढ़े, सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: तो जब गुरुदत्त के पास मैंने पहली दफा बाजी में काम किया, जहाँ से लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया, वो मेरी पहली पिक्चर थी बाजी, जो गुरुदत्त साहब ने डायरेक्ट की थी और वो उनकी पहली पिक्चर थी। मेरी भी पहली पिक्चर ऐसे थी कि वहीं से मुझे लोगों ने पहचानना शुरू किया। इसके पहले 25-30 पिक्चरों में काम किया था, मगर वो इधर खड़े हो जाओ, उधर खड़े हो जाओ, एक डायलॉग बोलो, ये बोलो, वो। तो वहां से सिस्टम ये हो गया कि फिर वो गुरुदत्त जी वो क्या करते थे कि पहले सब्जेक्ट जो उनको पसंद होता था वो सब्जेक्ट ले लेते थे, और सब्जेक्ट लेने के बाद वो बैठ के सोचते थे कि इसमें कौन से कैरेक्टर को कॉमेडी का रोल देना चाहिए, बना देना चाहिए। तो फिर वो राइटर के साथ, अबरार अलवी जो उनके खास राइटर थे, उनके साथ बैठ के वो डिस्कस करते थे और सोचते थे कि भाई ये कैरेक्टर जानने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, फिर उसको कॉमेडी ट्रैक पे एस्टेब्लिश करते थे पूरी तरह से। उसी वक्त से ये हो गया कि कॉमेडियन पार्ट ऑफ द स्टोरी होता था।
0: वाह, व्हाट अ स्टोरी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: Tell Mare, jump in.

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। अच्छा, आज तो हम बात कर रहे थे दो ऐसी पर्सनालिटीज की जो पोल्स अपार्ट हैं। शुरुआत में हमने संजू बाबा संजय दत्त की बात की, 80s वाले संजय दत्त, बचपन वाले संजय दत्त, फिर जॉनी वॉकर साहब की हमने बात की। कल भी एक खास इंसान के बारे में बात होगी, लेकिन एक और खास इंसान बात करेंगे। अभी आपको कल ही पता चलेगा, सब कुछ थोड़ी ना बता देते हैं। अभी बातों पे ब्रेक, ये खूबसूरत गाना सुनेंगे। मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Mirchi, it's hot. He is on a roll at present.
1: Shruti. मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: भाई। इन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस के अलग अलग जॉनराज दिखाए हैं फिलहाल, एक तो प्रीतम एंड पेड्रो में एंड दूसरा इनकी रिसेंटली रिलीज हुई सीरीज मुसाफिर कैफे। वेल इफ यू आर अ फिल्मची आपने गेस कर लिया होगा दैट मैं बात कर रही हूँ विक्रांत मस्सी के बारे में, जिन्होंने अपनी अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड ग्लोबल रिलीज व्हाइट मूवी की डबिंग कम्प्लीट कर ली है। सो द मूवी इज अ थ्रिलर जिसमें ह्यूमन ड्रामा है सेट अगेंस्ट अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड और ये इंस्पायर्ड है दुनिया के लॉन्गेस्ट एंड डेडलीएस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो इंटरनल वॉर ऑफ कोलंबिया हुआ था उससे। एंड माइंड यू इस वॉर को रिजॉल्व किया था एक इंडियन स्पिरिचुअल मास्टर ने अपने स्पिरिचुअल विजडम से और ये फिल्म इसी कहानी को ग्लोबल स्केल पे लेकर आ रही है। एंड दैट इज द रीजन इस मूवी में सिर्फ इंडियन स्टार्स नहीं इंटरनेशनल कास्ट एंड क्रू भी हैं। मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं एस एड फिल्म मेकर मोंटो बस्सी एंड इट इज बीइंग बैक्ड बाय लीडिंग फिल्म मेकर सिद्धार्थ आनंद, पीस क्राफ्ट पिक्चर्स एंड महावीर जैन। माइंड यू ये फिल्म मल्टीपल इंटरनेशनल एंड इंडियन लैंग्वेजेस में रिलीज होगी बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर। एंड विक्रांत मस्सी जिस हिसाब के एक्टर हैं आप इनसे एक्सीलेंस से और कुछ कम तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। बाकी आपने प्रीतम एंड पेड्रो और मुसाफिर कैफे अभी तक नहीं देखी देन आई मस्ट से कि आपको अपनी वॉचलिस्ट में ये दो सीरीज तो जरूर से जरूर डालनी चाहिए। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Let's go crazy.

Mirchi. It's hot.

पसीना शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना चिकनी चमेली कट कट रीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद है तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: झुमका
1: भैया जरा एक प्लेट ओवरथिंकिंग लगाना।
2: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
1: मिर्ची पिटी उन्नो आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति और आज डिस्कस कर रही हूँ ओवर थिंकर्स के बारे में, जिसमें दो कैटेगरी समझ में आई है। फर्स्ट आर द पीपल जो ऑल डे ऑल नाइट मुझे याद सताई तेरी ये वाला गाना गाते हैं ओवर थिंकिंग के लिए। ये कुछ भी काम कर रहे होंगे इनके बैकग्राउंड में दिमाग इनका ऑन रहता है और ओवर थिंकिंग मोड चलता ही रहता है नॉन स्टॉप। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी हो ये स्केड्यूल वाले ओवर थिंकर्स हैं, मतलब ये पूरे दिन अपने आप को समझाते हैं कि नो I will not let my overthinking take over me. मैं control करूंगी उसको, ठीक है? मैं पूरे दिन अपना काम करूंगी 100% focus के साथ, लेकिन रात के 10 बजे के बाद 2 घंटे मुझे चाहिए मेरे overthinking zone में। और उस वक्त गलती से मुझे 0.1% की disturbance दे दी ना किसी ने, बेटा अगले दिन तुम्हारे मर्डर को लेकर overthinking करूंगी मैं। वैसे आप इन दोनों में से किस कैटेगरी के हैं? आई बिलोंग टू द सेकंड वन, तभी तो इतने अच्छे से पता है ना इनके बारे में। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। Yes, you guessed it right, सलमान खान की बात हो रही है क्योंकि उनकी फिल्म टाइगर जिंदा है याद आई ना मुझे, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय अली अब्बास जफर। बाकी हमें तो पता है कि सलमान खान एक्टर के साथ साथ और भी बहुत कुछ है। ए हेलो, नेगेटिव डायरेक्शन में जाने के लिए नहीं बोल रही, मैं बेसिकली उनके आर्टिस्ट वाले अंदाज की बात कर रही हूँ यार। और उनका ये आर्टिस्ट जो है वो बाहर निकला था टाइगर जिंदा है के सेट्स पे। सो आपने वो गाना सुना है ना, दिल दिया गल्ला, उसमें जो कटरीना कैफ की पेंटिंग बनाते दिख रहे हैं सलमान खान, एक्चुअल में वो पेंटिंग उन्होंने ही बनाई है। हाँ, ये खुद अली अब्बास जफर ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था, जिसमें मेरा मन हो रहा है कि बोलूं कि जितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि मैं एक्टिंग तक नहीं कर सकता, देख लो मैं बहुत कुछ कर रहा हूं। खैर, अगर आपकी कोई फेवरेट फिल्म है और आप उसके बारे में कुछ ट्रिविया जानना चाहो, देन प्लीज मेंशन दैट फिल्म टू मी मेरे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करके। आई एम देयर विद द नेम MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति। मीनवाइल एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।